गुरु की शिक्षा की कहती है मन की जोत स्वरूप है, तू वाहिगुरु जी की अंश है, तू वाहिगुरु जी की जोत का ही स्वरूप है, उसको अलग नहीं है, तू परमात्मा का ही

है, तू परमात्मा का ही रूप है, पर तू परम दे विच पिया होया है। इस परम नू दूर करके अपनी असलियत नू लभण की कोशिश करके तू कौन है, ऐ गुरु जी मत है, गुरु की मत है कि तेन ये पता नहीं कि तू कौन है। तू है वाहिगुरु का रूप, वाहिगुरु की अंश और वाहिगुरु की तमाम खूबियां शक्तियां वो तेरे अंदर हैं। वाहिगुरु जी की तमाम अकल इंटेलिजेंस वो तेरे अपने अंदर है। वाहिगुरु के तमाम गुण तेरे अपने अंदर हैं, पर तू अपने आप में कुछ होर समझी बैठा है। जो समझी बैठा है कि वो नहीं है, मन की जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान, अपना कहने मूल पहचान, अपनी ओरिजिनैलिटी पहचान, अपनी रूप में पहचान कि तू किसका है, कितों आया है, किस दे नाल तू संबंध रखना है। कहते अपने जीवन दे विच ओ लभण की कोशिश कर, अगर तू ओ नहीं लभिया। हम पंक्ति ध्यान नाल सुने, मूल ना बूझे अपना जे पशुआ के तोर दिए। कहते जिन्हों ने अपना मूल नहीं लभिया, अपनी ओरिजिनैलिटी नहीं लगी कि उन्हों का आगाज कितों होया। कहते हैं वो पशु हैं अते तोर गवार हैं। मूल ना बूझे अपना से पशुआ से तोर दिए, ऐ है गुरु की मत। तो पहली जी मैं दस चुका हाँ, हम किसी आप ही फर्क देख लो कि गुरु की मत जो की है और बाहरली संसारी मत जो की है। ये जी मत है कि अपने आप नू पछानना है, आप पछाणो तां कह जाणो। गुरु तेग बहादुर जी ने भी आख्या है ना, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनवासी सदा लेपा तो ही संकमाई, बहुत मध जो बात बस है मुकुर माहे जैसे खाई। कैसे ही हर बसे निरंतर कट ही खोजो पाई, बाहर भीतर एको जानो ए गुर ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, अपने आप नू चीनन तो बिना, अपने आप नू पछानन तो बिना, अपने आप में लपन तो बिना मिटे ना परम की साई। ये परम की प्रेर जी है लिखनी है, किसी परम की ही रहना पाव हो कुछ होर अति समझी अपने आप में कुछ होर जानते हो, उसको वही ट्रैजडी की हो सकती है। इसको वही ट्रैजडी अति इसको वही ना समझी, इसको वही बेअकली की हो सकती है कि मैं होवा कुछ होर अति अपने आप में समझी कुछ होर जाना। इसमें भी मत बड़ा आख्या जा सकता है। गुरु जी महाराज कहते हैं पहला ये तो फाइंड कर लो कि तुम हो कौन, उस तो बाद फिर तुम मत वाले कहा जा सकता है। उस तो पहला तुम मत वाले नहीं कहा जा सकता कि तुम्हारे पास मत नहीं है। मन तू जोत स्वरूप अपना मूल पछाण, कहते अपना मूल पछाण। ऐ हम नुक्ते मैं अब जी सामने रख रहे हैं कि गुरु की टीचिंग दे विच की कुछ आंदा है। गुरु की टीचिंग दे विच ए आंदा, एक होर बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आंदा है गुरु की टीचिंग दे विच। कोई स्कूल, कोई माँ बाप, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज वो बिल्कुल नहीं सिखाएगा। वो की है गुरु महाराज की टीचिंग दे विच आंदा है कि मरना याद रखो, मरना याद रखो। तेरे माँ बाप सिखाल दे हैं ये गल ईमानदारी के नाल रखना। मेरे माता पिता ने तो मैंने कदे नहीं जी सिखाया कि मरना याद रखा था। मैं तो सच आप जी के सामने दसता, आप जी अपने मतलब जानते हो, कदे किसी ने नहीं दसिया कि भी मरना याद रखी का होंगे। हाँ घर च कोई मरण की गल करे तो यह जरूर सुनीता सी कि मोहरों कहते सुख बोलो, सुचा जी की गल करो, मरण की गल ना करो सुख बोलो, सुख की गल करो, चुप बचन बोलो। महाराज जी बाबा जी थां थां ते कहंदे हन मरना याद रखो। गुरुदा मंडप माल न लाए, अपना चित मन इन्हां मंडपां नाल इस दुनियादारी दे माल नाल ना लगा। कि की कर मर्ग पताणी चित कर, मर्ग
मर्ग सताणी, सताणी का भाव बहुत शक्तिशाली, मर्ग माने मृत्यु, मृत्यु जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, उन चित तारे उन याद दे विच रख, चित दे विच रख। गुरु महाराज की बाणी च आखदे हन, इह तृष्णा वड्डा रोग लगा, साथ संगत ध्यान अपना फोकस करके रखो, क्योंकि मैं कहना आप जी कीर्तन सुनने के बाद घर जाओ तो जाकर गलबात करो, क्योंकि सुन के आए हाँ फिर उसमें बैठ के विचारो, उसका कोई नोट भी लाओ, पांच दिन दसा दिनों के अच्छी कुछ अचीव करना। बाबा जी बाणी च आखदे हन, इह तृष्णा वड्डा रोग लगा, मरण मनोविकार, मरण मनोविकार दिता, खाना पीना हसना सौना विसर गया है, मरना कहते इसमें मरना बिल्कुल विसर गया, मरना बिल्कुल विसर गया, इसमें मरना भी कहते मरना याद रखो। गुरु बाबा जी अपनी बाणी के आखते हैं मौत में याद रखो, कहते हैं मत्ती मरण विसारे है, एक दुनियावी वस्तुओं के विच मत्ती मैंने मस्त होई हुई, इस जीव जिंदड़ी ने इस मत ने की किया है, मरना मनो विसार है, मत्ती मरण विसार है, खुशी खुशी दिन चार चार एक दिन की खुशी की, इसने बिल्कुल ही भुला दिता कि आ जो मेरा जीवन है ये तो एक बुलबुले तो ज्यादा वध के अहमियत नहीं रखता, जैसे जलते बुदबुदा उपजे दिल से नीत, जब रचना कैसे रची कह नानक संगीत, असि इस पानी देते जो बुलबुला होंदा है उस तो वध के कुछ नहीं है। कई बंदे कह देंगे हम यू डोंट नो मी, हम कई बंदे गल कह रहे हैं कि तुम्हें मेरा पता नहीं है, यू डोंट नो मी, महाराज जी कहते हैं हाँ सानू तुहाडा पता है, सानू पता है तुहाडा कि तुसी कौन हो, इस पानी के बुलबुले तो वध के कुछ नहीं है, कई गांधी से यू डोंट नो, असि कह दें कि यू डोंट नो, महाराज जी कहते हाँ सानू पता है तुसी कौन हो, दुक्का अस्त रक्त रेते चाम इस उपर ने रख गुमान, हड्डियां लहू नाड़ियां पिंजरा मिज आदि यह गंदगी का एक फैला है, इस उत्ते मान करते उत्ते कहते मैं तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हाँ, वो कहते सानू पता है तुम कौन हो, बाकी तुम कहते कि तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हाँ, वो कहते पता है, जन्म जन्म की इस मन को मन लग गई, अंदर खुदा मैल ही मैल है और कुछ नहीं, मैल ही मैल, असि कह दें कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हाँ, वो कहते पता है कौन हो, सबको भरिया फूक, हमने भी फूक न सारे भरे पे, वी नो यू, बाबा जी कहेंगे मैं नहीं कह रहा, गुरु बाबा जी कहते असि एग्जैक्टली जानते हाँ कि तुम कौन हो, हमें भी फूक के नाल परे पे, हड्डियां बिस्ता मास लहू नाड़ियां का एक पिंजरा हो, पिंजरे का इतना भी परिभाषा नहीं है, क्या परिभाषा इस पांडे का, इतना को लागे थनका, इतना को थनका लगे तो ये सुख सकता है, मुड़ के द्वारा ये जुड़ता नहीं, इस करके कहते मौत में याद रखो, मौत में याद रखोगे तो तुहाडी अटैचमेंट जो है अपने आप नाल, अपने तन नाल, अपने बाकी तमाम चीजों के नाल, टुटन का तोड़न का जीवन वैराग पैदा करन दा एक ही साधन है कि मौत में याद रखो, जो मौत में याद रखेगा उसके भी ही जिंदगी दे विच फर्दर सवाल आएंगे कि मौत तो बाद की होगा, फिर मैं की बनागा, अदरवाइज एक क्वेश्चन पैदा नहीं होता। तो गुरु की टीचिंग के दूसरा पॉइंट यह आता है कि मौत में याद रखो, हम मैंने दसो ये मत कितने मिलती है, जो मिलती है तो दस दिए, कोई यूनिवर्सिटी लॉ के कोर्स के मेडिसिन के कोर्स के होर किसी कोर्स के सिखाते हैं कि मरना भी याद रखो, बिल्कुल ये है गुरु की मत, जो असेंशियल चीज़ा गुरु की मत में सिखा लिया जाए हैं वो दुनिया की किसी भी होर मत के दायरे के आदि ही नहीं, होर बहुत कुछ है,
गुरु महाराज के साथ एकदम सादा रहो, सादे रहो। ये कौन सिखाता है कि सादे रहो? साड़ियाँ लाइफ के अनुभव सोफिस्टिकेटेड हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, बड़ी लग्जरियस हैं, करके एक्सपेंसिव भी हैं, एक्सपेंसिव होकर के स्ट्रेसफुल भी हैं, तथा बहुत सारी एंग्जाइटी का कारण बन रही हैं। और महाराज जी कहते हैं सारे का सारा अवॉइड किया जा सकता है जस्ट बाय लिविंग सिंपल जीवन की। हम उसकी मिसाल सुनो, कबीर साहब का श्लोक है सिंपलिसिटी से, कहते कबीर खूब खाना खिचड़ी या मैं अमृत लोन, कहते मेरे लिए खिचड़ी ही जरा है वो बड़ा खूब स्वादला खाना है, जेदे सिर्फ लून ही पाया है तो अमृत वर्गा उसका स्वाद है ना, तो बनाने में चिर लगे ना, उस दे नाल फैट प्रॉब्लम होवे ना, उस दे नाल कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होवे ते ना ही उस दे नाल ग्रोसरी का बिल वधे। कहिंदे खूब खाना खिचड़ी जामे अमृत लोन, ना ही वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, जेरा रोटी कार ने गला कटावे कौन, जेरा रोटी कहिंदे मां साली रोटी ने चला मुर्दार ले आओ, उन्हें खिलो, उन्हें बनाओ, कर जाता है जो है वो मेरा करो, फिर जिन्होंने आज खावे वो कदे सामू नहीं खाएंगे। कुदरत के ऐसा नियम नहीं है, जो कर्म करोगे उसका फल उसे तुरंत ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हीरा रोटी कार ने स्वाद के बदले मैं किसी जीव का लिया के गला टक दिना हाँ तो उस कर्म का कोई नतीजा नहीं निकलना, उस कर्म का भी तो नतीजा निकलना है। कहते कौन निकले जाए स्वाद के बदले अपना गला कटवावे, कबीर साहब का श्लोक है हेरा रोटी कार में गला कटावे कौन, कहते मेरी ऐस इन्नी स्वाद की गल बदले मास, हेरा रोटी का मतलब होंगे मास वाली रोटी, कहते मास वाली रोटी के बदले इन्नी गल बदले कौन अपना सियाणा बंदा गला कटाउंदा है। कहते मेरे लिए सादी सिंपल खिचड़ी ही अमृत वर्गी है, इतों भाव है सादा खाओ, सादा जीवन जियो, यह है गुरमत की सिक्ख्या, गुरमत की टीचिंग। फरीद साहब बाणी च आखदे ने फरीदा बुरे का भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, जिहड़ा पहले ही बुरा है, जिहड़ा पहले ही बुरा है उसनू होर बुरा बनाना है, उसका बुरा करके तुसीं होर बुरा बना दिओ, बुरा होण दे नाल ओ अपनी आत्मा का नुकसान कर रहा, अपने जीवन का नुकसान कर रहा, अपनी मत का नुकसान कर रहा, अपने जीवन को तबाह कर रहा बुरा होण करके। होर की बुरा उसका करना है, होर उसका बुरा की करना है, अगर होर तुसीं उसका बुरा करन लग पे तो फिर उस नाल भी ज्यादा बुरे हो गए। फिरदा बुरे का भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, हुण ए बहुत मुश्किल गल है गुस्सा मन ना हंडाए, कौन नहीं चाहता कि मैंने गुस्सा ना आए, पर गुस्सा सानू सबना नहीं आ जाता। यह है गुरमत की तालीम, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगे पल्ले सब कुछ पाए। क्योंकि अगर तू इन्या की गल्ला कर लें कि तू देही दे अनेक रोगों तो बच जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रोग सिर्फ पैदा ही गुस्से करके होंगे, पैदा ही इमोशनल प्रॉब्लम करके होंगे। तो साहब सिंह जी अब आपके सामने मैं दो किस्म की मत अलग अलग करके रखी है, मन भी मत जी सामने इधरों उधरों मिली है अते असी उसमें मत समझी बैठे हैं, अपने आप में अकल वाले अते मत वाले समझी बैठे हैं, कदे सवाल नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया, शक नहीं की, कदे ये सोचा नहीं कि मत कितों लई भी है, वैसे ही कितों आ गई है, नहीं मत सानू आई नहीं असी वड्डे जरूर हो गए हैं, मत सानू आई नहीं असी मत वाले होण दा भरम जरूर करन लग पए हां, मत सिर्फ इको ही ढंग दे नाल आंदी है, गुरु की मत तू ले आने सब बिना मौजूद देखा। जितनी देर तक गुरु तो असी मत नहीं लेंदे फिर वो इंसान अपनी जिंदगी दा हर बोल हर कर्म हर सोच ओ सोचे ओ करे ओ बोले जो गुरु की मत के नाल बिल्कुल मिलती हो, जो गुरु की मत के विचों हो, तो वह कह सके आ मैं जो बोल रहा
ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਮਸਕਟ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਕੀਰਤਨ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡਿਸ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਲ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਡਿਸ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਮਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਤ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਲਿਆਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕਾਪਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਮਤ ਖਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਤ 'ਤੇ ਹੈ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਖਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਕੀ ਮਤ ਨੀਚੀ, ਨੀਚੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਤ ਹੈ। ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰਰੀ, ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਮਤ ਖਰੀ, ਗੁਰਕੀ ਮਤ ਨੀਚੀ, ਸਾਚੀ ਸੁਰਤ ਸੁਹਾਵਣੀ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨਮੁਖ ਮਤ ਸੀਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਤ ਸਿੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤ ਸਿੱਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਿੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਐਸਪੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਲਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੂਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਹਾਲੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਸਬਸ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਗਰੋਹ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਜੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗਾਓ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤ।

को पायो तिन तिन अपनो राह चलायो, तिन तिन अपनो राह चलायो। साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज बचित्र नाटक दे अंदर अपनी पावन गुरबाणी ते अकाल पुरख दे सामने होया होया प्रोमिस गरीब नु आज सचे पातशाह जी दे सामने कीता होया वचन, भई मेरे अकाल पुरख नाल मेरी केड़ी केड़ी गल बात होई ता मैं संसार दे अंदर अवतार धारिया। गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह साहिब सचे पातशाह अपने पहले जन्म दी हिस्ट्री दस रहे ने बचित्र नाटक दे अंदर, ते आरंभ करदे हन भी जदों संसार दी उत्पत्ति होई, किन्ने राजे महाराजे आए, किन्ना वंश विचों जन्म लैंदियां होया साडी ए सोडी वंश उत्पन्न होई। गरीब नवाज सचे पातशाह

पहले कन विचो मैल कड़ी ते मद ते कीटब नाम दे राजे जिहड़े राक्षस सन उन्हां दा जन्म होया। दूजे कन चो मैल कड़ी भी सृष्टि बन गई। प्रथम कान ते मैल निकारा ताते मद कीटब तन धारा। दूतिया कान ते मैल निकारी ताते भई सृष्टि सब तारी। कहंदे भी ए मद ते कीटब दा युद्ध बड़ा समा हुंदा रहा, बड़ा समा हुंदा रहा। लड़दे रहे दोनों बली सन। आखिरकार युद्ध लड़दिया लड़दिया दोनों दे दोनों जड़े हन मौत दे घाट उतर गए, मर गए। इन्हां दे शरीर दी जड़ी आ चर्बी सी ना पानी अंदर डिग गई। पानी अंदर डिगण दे नाल मिज जड़ी सी ना मेदा पानी विच डिगया। गुरु गोबिंद सिंह साहिब सचे पातशाह महाराज कहंदे वी अकाल पुरख बाच ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਮੇਧਾ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ

पोतरे बंस चल पई ना इस दी उस नू सोढ़ी बंस दे नाम दे नाल जानिया गया याद किया गया। साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज लिखदे ने वी कितना भयानक युद्ध होया भई ए जड़े ने दोनों दे दोनों बंस एक पासे लहु बंस एक पासे कुसी बंस जदों फिर ए जंगे मैदान उतरे ना

पोहम पातुक बिना से गुर अमरदास परसी सिद्ध साधक आशा से गुर अमरदास।

फिर पथकहरे ने तेन दुख न भुख तिन निधन न कही। उस इंसान नू उस नर नू कोई दुख ते भुख वापर नहीं सकदी, ओ निर्धन नहीं रह सकदा, ओ निर्धन नहीं रह सकदा। तिनर शोक न हुए तिनर से अंत न लईए, उथे शोक नहीं हो सकदा उसदे। तिनर से अंत न लईए तिनर सेव न करे, ओ किसी दा गुलाम भी नहीं होऊगा। तिनर सह सहज समपै, वो गुलाम भी किसे दा नहीं होगा, ते हर एक विच ओनू वेखूगा। सहज समपै तिनर दुलीचे बह है, दुलीचे दा अर्थ है दुलीचे दा गलीचे, उदा स्टैंडर्ड एडा उच्चा हो जूगा, गलीचे विषय होंगे। तिनर दुलीचे बह है तिनर उथप विथप है, ओदे विच एनी शक्ति आजूगी, वो राज खो भी सकूगा तो राज दे भी सकूगा, उखड़िया होया नू बसा भी सकू। तिनर दुलीचे बह है तिनर उथप बिथप है, सुख लह है तिनर संसार में, इस संसार विच ए सारे सुख ओनू मिलन। अप है पट रिप मद ते सक्यथ तिनर जालप बने, किनू ए सुख मिलनगे किनू ए वड्याईया मिलनगियां। गुरु अमरदास सुप्रसिन्न जे जिदे ते तीजा गुरु नानक गुरु अमरदास महाराज जी ते प्रसन्न हो जाएंगे, ये सारे सुख ये सारी

0: सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा जी दी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत हजूरी अंदर बैठ गुर उपदेश अते उदेश नूं उत्साह सहित सरवण कर रहे गुरु खालसा सात संगत माई भाई सतगुरु दा अपना ही परम पवित्र आपा जीओ वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह।
0: सतगुरां दे चरण शरण आण तों महाराज जी ने मेहरामत करके असां सारिआं नूं ही अपने वाकां द्वारा अथवा अपने हम ख्याल परमेश्वर दे रंग अंदर रंगीजे होए महापुरश ग्रस्ती संत किरत ते कीरत अंदर निपुण भगत कबीर जी दी जुबानदानी द्वारा अंतले शब्द अंदर सानू जीवन दे परम सुख पर आनंद परम तत् अते पूर्ण अवस्था दी प्राप्ति दा ढंग फरमाया है। ए जुगतां ए तरीके ए दौर गुरु साहिब जी आप भी फरमान करदे रहे अपने नवाजे गुरसिखां महापुरशां भगतां ते संत जना दी राहीं भी सतगुरु जी ए उपदेश हर बनी नौ इंसान तक पहुंचाउण दे इच्छक रहे। इस उपदेश नूं महापुरश अज भी अपनी रसना द्वारा अपनी कलम द्वारा ते अपने जीवन दी जुगत द्वारा अमली तौर उत्ते प्रचार रहे। कलमा नाल उपदेश करने वाले भी अनेका ने रसना नाल भी उपदेश करने वाले उपदेशक बेअंत ने पर बड़े फिक्र नाल बड़े उचेच नाल उस परमेश्वर दे यस नूं जीवन दे ढंग नूं गुरमत दी व्याख्या नूं जो अपनियां मन बच कर्म द्वारा प्रचारदा है ओ विचारक भी है ते प्रचारक भी है। ध्यान नाल दास दा वचन प्रचारक बेअंत ने अजकल जिन्ने दसां गुरुआं महाराज साहिबान तों पैदा नहीं कर होए इन्ने अजकल असां प्रचारक बन गए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दीआं बीड़ां भी इन्नियां बन गईआं ने जिन्नियां दसां पातशाहीआं तों रल के भी नहीं बणीआं। गुरुद्वारे साहिबान इन्ने बन गए ने जिन्ने सतगुरां तों बनाए नहीं जा सके। तो वेखण विच आंदा है कि जदों किसे सियाणे कोल बैठिए विचार वटांदरा होवे गुरमत दी गलबात होवे तां फिर अंदरों लज्जा आंदी है कोठी कंबदी है ते लरजा आंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज इस तों भी अनंत गुणा होवन तां भी थोड़ा है। कीर्तनी वीर जत्थे प्रचारक ते कलम दे तनी व्याख्याकार कर कर होण जरूरत है लेकिन इस दे नाल सारे ही असां अपनी अपनी जगह ये फिक्र रखिए कि गुरु महाराज जी आप किहो जिहा जीवन जी के सानू सदियां तक साडे सामने काया पलट के आए जुगत ओहियो रखी जोत ओहियो रही काया पलटा के समय दी लोड़ अनुसार जलवा नमा होए प्रगट होए जहूर होया जाहर होए

अत कल्याणकारी अत सुखदाई ते अत खुश जायका अत मिठे उपदेश नाल दास दी रुचि है कि सारी संगत ही मुंह मिठा कर दे तां वी चंगा ही है, रल के वंड के छकना चंगा ही हुंदा है। नाले अत मिठा उपदेश रसना तो गावीए, इन्ना क जरूर बोलो जिदे नाल आप कथे आप सुनने आ गई, अपना बोलिया आप सुने।

0: मोहल्ला पहला
1: ये मुहत का कर्म है कर्म पितरी दे
0: अगे वसे आनी है पितरी चोट करे वड़ी हाथ लाल

जेकर सूतक मनिए सबद सूतक होय, गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होय, जेते दाने अनेके जिया बाज न कोय। पहला पानी जियो है जितहरिया सब कोय, सूत क्यों कर रखी है सूत पवेर।

गुरु की संगत अज दा शुभ दिन कॉन्फ्रेंस दे पहले दिन दी अरमता और बख्शिश सतगुरु जी दी इस वक्त समा जरा अमृत वेले तो लंघ के आप जी नूं जरा थोड़ी जी गर्मी महसूस हो रही होवेगी जिथे आप जी ने सतगुरु जी दे कई चमत्कार देखे हैं उथे सब तो वड्डा चमत्कार शब्द है एदी विच कला है वाजे पंज शब्द घर सवागे शब्द वाजे कला जद गिरधारिया उस कला नूं होर प्रगट करन वास्ते सतगुरु जी ने शब्द नूं रागां विच उचारण कीता है। मेरा दिल करदा है इस वक्त सारे दुनिया दे विद्वान और कलाकार सूझ वाले बैठे हो गुरु दी कला देखिए राग सारंग विच और आप जी चंगी तरह समझ के इस नूं सुनोगे आप जी दे तन मन विच ठंडक पैदा हो जाएगी और गुरु दी बख्शिश और समय दा ए निचोड़ होवेगा। शब्द सारे माई भाई बड़े प्यार नाल टिक के सुनांगे तां इहदा ज्यादा लाभ होवेगा।

अनक जन्म बीती अन परमाई, अनक जन्म बीती अन परमाई, कर वासना देवे दुत्तर माई।

0: हर हर नाम निदान है, गुरमुख पाया जाए तन मन शीतल हो,
1: शीतल हो।
0: हर हर नाम निदान है,

सितंबर स्वामी सच में आचे साथ रहे सबको सत समावे रिक कह रहे प्रभु राम नाम देवा मैं सुन।

छत्तीसगढ़ से उन्हें पहला आपके पांडे साजो ना पे बुन दे एक ही समय एक तुले नहीं थे दिन निहाली पे तुम निकले आपने साजे करिए।